0: सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
1: प्यार हुंदा फुल्ला तो मनुख सोहणिया,

0: पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें, और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
1: प्यार हुंदा फुल्लां तों मनुख सोहणिया।

0: मीनल जी स्थौ पनी कदबा जरी क्या छुते बनन
1: असिस के इंफॉर्मेशन पन्नन सामेनन दिवंत वलो पकनाओ ब्रोपन
0: दपान मुसलमानन हंद के मशहूर इबादत गाछ बड़ मशीद नवहट्टा दस्तगीर साहब खानियार मखदूम सब हरी पर्वत श्रीनगर हजरत बल दरगाह शाही हमदान मस्जिद फतेह कदल सद सब मनीगाम त बाबा ऋषि टंगमर्ग ये जन बटन हिंद खास खास अस्थापन शंकराचार्य मंदिर हरी पर्वत ज्येष्ठा देवी मंदिर ज्वालाजी मंदिर भद्रकली मंदिर तुलमुल देवी हुंद मंदिर विवेकानंद केंद्र नागडंडी कोटी तीरथ बारामुला तो बेई तारिया जाए इन मज ठ बरव मंदिर तमिल
1: रमेश जी दपान ईसायन हुन बोर्ड बार चर्च शहर श्रीनगर मज वाक सराज शरीफ सो पवित्र जाए ये नुंद्रेश रोजान उस तो ओत बट मुसलमान तो सिख हाजरी दिन सिख बरदरी हुन सारे खुद बोर्ड गुरुद्वारा गुरुद्वारा छठी पातशाही कड़ दरवाजस निश श्रीनगर शहर मज तो ओत सिख बरदरी बड़न दोहन पे काफी तदाद मज ग रमेश जी ब्याह इंफॉर्मेशन यसान दिन सोच से कशीर मंज उस एक जमान फन तमीरात नक्श निगारी तो संग तरशी अरूजस पे वर्जम ये मिसाल प्रान मशीदन हंद गुमबद तो दरो दीवार आज तलान नबर पे वुचने
0: खंडरातो मंजी अवंतीपुर मंदिर बुमजे मंदिर अनंतनाग बोनियार मंदिर मानसबल मंदिर मारतन मंदिर पांद्रठन मंदिर तो बेतिया मंदिर ये कन्न हज गर्म मूर्ति संग तरेशी हंदे फनुक मुजाहिर करान

वेलकम बैक फ्रेंड्स। ते आजकल करा दे हे डुगर प्रदेश ते सोने सोने पिकनिक स्पॉट्स ते विजिटिंग प्लेसेस दी। ते जदों गल आंदी है विजिटिंग प्लेसेस दी ते सब तो पहला जेड़ा ना हर बच्चे बच्चे दी जुबान पर आंदा है वह है पत्नी टॉप। हुन तो सोचा दे उन्हें पत्नी टॉप किस चीज़ है, इत्थे दियाँ पत्नियाँ के बड़ी टॉप दी होंदियाँ ने। वो तो खैर मैं नहीं पता, वो तो उहे दस ही सकते ने जिन्हें उत्थे दी कुड़ियाँ ब्याई दियाँ नू, पर आई एम श्योर अच्छियाँ के होनियाँ ने। एक्चुअली इस जगह का नाम पत्नी टॉप पे आया है, पहली सी आखदे है पटन दा तलाब, मतलब राजकुमारी दा तलाब। आखदे ने उस टाइम पर जिहड़ी उत्थे दी रानी ही वो उत्थे तलाब पर ना नहीं आउंदी हैया रोज़, ते इसे करिए उहदा नाम पई आ राजकुमारी दा तलाब, मतलब पटन दा तलाब। वो बाद करदे करदे काफ़ी अरसे बाद वो पटन दा तलाब बनिया, सरल भाषा ही आखने पत्नी टॉप। ते बड़ा के सुंदर, बड़ा के मनोरम जिहा है निका हारा इलाका है जम्मू का। एक करीबन 112 किलोमीटर अगे पौंदा है। तुस जम्मू का टैक्सीज वगैरह ले सकते हो, हायर टैक्सीज बड़ी ईजीली अवेलेबल हो जांदियां ने। ते तुस जम्मू का या कटरे का आफ्टर दी वैष्णो देवी यात्रा यू कैन प्रोसीड फॉर दी पत्नी टॉप ऑल्सो। अगला गाना सुनो पहले तुस।

Hello friends, welcome back to Suna De Hey Dogri Radio with me, Neha Sharma. ते आज कल करा दे हे जम्मू दे बड़े की खूबसूरत लाके दी जो कि पत्नी टॉप है। इथे देवदा दे बूटे कन्ने परोचे दा है, बड़ा गे मनोरम नजारा है इथे दा। ते जंगल नुमा घुमावदार पहाड़ियों पर तुंदी गड्डी इथे सरपट दौड़दी हुई पहाड़ी दे उपर पुजी जांदी है, जिसे की पत्नी टॉप आखदे ने। बड़ा गे शांत, बड़ा गे मनोरम दृश्य है। ते अगर तुस अपनी जिंदगी दी तोड़ भाग कोला बचने आस्ते कुछ सुकून दे पल बिताना चाहते हो तो तुंदे आस्ते बेस्ट जगह है। तुस अपने छुट्टी लेइए इथे एक दो दिन गुजारो तो तुस अपनी जिंदगी दा बेस्ट टाइम फील कर गए। तो जेकर अगर तुंदे कोल टाइम उन्ना नहीं है तो तुसी इसी वन डे च भी कवर कर सकते हो। तो अगर मैं तुसी आखा नहीं कि बड़ा गे शांत है, बड़ा गे शांत है, तुंदी आत्मा लई बड़ा गे सुकून है इत्थे, तो इहदा मतलब ये बिल्कुल गे नहीं है कि ये बिल्कुल बोरिंग प्लेस है। जी नहीं, इत्थे बड़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी हैं, हॉर्स राइडिंग है, फोटोग्राफी जिन्हें बड़ा गे शौक है उनके वास्ते बेस्ट प्लेस है। आइस स्केटिंग है इत्थे, केबल कार है, गोल्फ है, पैराग्लाइडिंग है, बहुत सारे स्पोर्ट्स भी हैं इत्थे, तो तुम सारा इंजॉय कर सकते हो।

0: टीका टिप्पणी होवेगी चलंत मुद्दियां ते मसलियां ते
1: तिरछी नजर रवेगी कनेडा ते दुनिया दी सियासत ते
0: छह पर लगेगी नवे पुराने गीता दी
1: बाता होणगियां सभ्याचार ते अमीर विरसे दिया
0: सुनना जरूर लाइव शो विद शमी पठल 5:30 AM ते सोमवार तो शुक्रवार
1: बिजनेस दी प्रमोशन ली आज ही कॉल करो 416-917-7063 ते 416-917-7763

0: राजधानी राजधानी
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: सो बिल्कुल जी 905-673-3337 जुड़े हुए हो पंजाबी लहरां दे नाल। स्टूडियो के खड़े के मुताबिक 7:29 हो चुके हैं। मेरे नाल पंजाब दी धरती तों रमेश हुशियारपुरी जी जुड़े हुए ने। देश दुनिया की खबरों से सांझ पा रहे हैं, पर फिलहाल तो असीं पंजाब तो ही नहीं बाहर आ रहे। सो बहुत सारिया खबरों ने, पंजाब दीआं गल्लां बातां होर करांगे, बहुत सारिया कॉल्स ने। असीं 10 मिनट तक कॉल लवेंगे, 10 मिनट होर खबरों के नाल जुड़ांगे। सो अगली खबर वल चलते हैं। रमेश जी, रवनीत बिट्टू के जिहड़े तत्ते शब्द आ हुणे तुसीं जिक्र करके हटे हो कि कुछ क शब्द होंदे जिहड़े कांग्रेस नूं देने पै जांदे आ, कुछ क BJP दे बड़े। सो ये जिहड़ियां बयानबाजियां कई वारी महंगियां भी पै जांदियां। सो रवनीत बिट्टू के जिहड़े तत्ते शब्दों की गल करिए, पंजाब विच उस ते भी हुण सियासत गरमाई हुई आ।
3: प्रभ संधू जी, रवनीत बिट्टू की गल मैं करन लगा, परंतु नाल ही मेरी तुहानू भी गुजारिश है कि मैं चाहना है कि तुसीं बली पंतू जाणो कि आपां हुण इस तों तुरंत बाद जे स्रोतियां नाल कुछ सांझ पा लईए। मैं भी एक विशेष सुनेहा स्रोतियां नूं देना चाहुंदा है, क्योंकि तुसीं जाणदे हो ते मैनूं लगदा है कि रवनीत बिट्टू तों बाद उह सांझां भी स्रोतियां नाल पालणियां चाहीदियां, तां जो कि फिर स्रोतियां दे मन विच कोई गल रहि ना जावे, क्योंकि तुसीं इस गल तों जाणो कि अज बड़ी विशेष सांझ जिहड़ी मैं स्रोतियां नाल पाउणी है। परंतु उह तों पहिलां जिहड़ा तुसीं गल आख दिती है, गल जरूर करनी है, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण तरीक है अज पंजाब दे 31 अगस्त। प्रभ संधू जी, सन 1980 तो लैके 90 तक जिहड़ा वो 10 साल का पीरियड सी पंजाब का, असीं उहनूं काला, वैसे होर अगे पिछे 95 तक भी चले जाइए, उहनूं पंजाब का काला दौर आख्या जांदा। काला दौर एवें नहीं आख्या जांदा कि ऐ नहीं असीं कह सकते उदों रातां ज़्यादा कालियां सी, शायद सूरज फिका हुंदा सी, इवें ही सूरज हुंदा सी, इवें रातां हुंदियां सी। परंतु उस वेले इदां दे हालात इत्थे उसर गए कि पता नहीं सी घरों गया बंदा किहड़ा वापस आवेगा किहड़ा नहीं आवेगा, पता नहीं कदों किहदे किसने गोली मार देनी, किसी ने धर्म के नाते मार देनी, किसी ने मजहब के नाते मार देनी, किसी ने किवें मार देनी। बड़ा ही पंजाब दे विच उस वेले बड़ा कुछ इदां दा वापरिया जिहदे करके उस दौर नूं काला दौर आख्या जांदा है। उस दौर तो एंड जिहे दे पॉइंट ते जदों थोड़ा बहुता असीं कहीए कि मोड़ा पैण दा दावा सरकारां ने कीता जां थोड़ी जिही शांति पसरी, ते एक घटनाक्रम वापरदा है चंडीगढ़ सैक्टरीएट च अज की तरीक, शायद समां भी मैनूं लगदा प्रभ संधू जी बिल्कुल आह ही होवेगा जदों असीं स्रोतियां नाल सांझ पा रहे, यही समां सन 1995 जदों पंजाब के तत्काली मुख्यमंत्री बेअंत सिंह नूं मार दिता जांदा है एक मनुखी बंब जिहड़ा बेअंत सिंह ते बेअंत सिंह दे नाल कईयां दी जान लै लैंदा है। वह मनुखी बंब दिलावर सिंह सी, उहनां दे मन विच गुस्सा गिला सी, दिलावर सिंह जां भाई राजोवाणा जां भाई शमशेर सिंह की गल करिए, जगतार सिंह तारा की गल करिए, जगतार सिंह हवारा की गल करिए, कि इस व्यक्ति ने पंजाब दे विच बहुत नौजवानी का घाण कराया। उस गुस्से गिले च उन्होंने उसका कतल कर दिता पंजाब के मुख्यमंत्री का, उस तो बाद अज तक बहुत कुछ जिहड़ा उस मुद्दे नूं लैके भी शब्दी जंग रही है। हुण ताजा तरीन जिथे एक पासे बहुत सारे चेहरे दिलावर सिंह नूं अजे याद कर रहे हैं, दिलावर सिंह नूं कौम का शहीद आख रहे हैं, उहदा पिंड है जैल सिंह वाला उत्थे समागम होए, जां होर अपने अपने अंदाज विच दिलावर सिंह नूं याद किया जा रहा है, दूजे पासे बेअंत सिंह नूं याद किया जा रहा है। हुण तुसीं रवनीत बिट्टू का जिक्र किया, रवनीत बिट्टू बेअंत सिंह का पुत्र है। हुण प्रभ संधू जी, रवनीत बिट्टू की यह आदत जी मैनू लगता कि पहला तो माड़ी सी, हुण भाजपा की वफादारी च होर माड़ी हो चुकी है। रवनीत बिट्टू ने जिहड़े अज शब्दों का प्रयोग किया, वह कह सकते कि बड़े तत्ते शब्द है। रवनीत बिट्टू ने बड़ा सीधा पदरा जिहड़ियां कुछ गल्लां आखियां कि भाई कुछ पार्टियां इत्थे कहिंदे जगतार सिंह हवारा का सहारा लैण नूं फिरदियां, उन्होंने सीधा आम आदमी पार्टी का नाम लिया कि वह जगतार सिंह हवारा का सहारा लैण नूं फिरदी, कुछ अमृतपाल का लै रही है, तो अकाली दल का कहिंदे राजोवाणा राजोवाणे का साथ लै रहे हैं। जिहड़ी सब तो कड़वी गल कही कहिंदे कि हुण कहिंदे कि मामा तड़फदियां ने, क्योंकि गल जगतार सिंह हवारा की जमानत की चल पैरोल की चल रही है, तो कहिंदा जे चंगे काम किए होंगे इन्हों लोगों ने तो अच मामा तड़फना ना पैंदा, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਬਿਆਂਸੂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਣ ਗਿਆ ਮਨਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਂਸੂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੜਫਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛੱਡਣ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਰੇ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਤੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੱਤਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ।
2: ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 905-673-3337 9053337 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਹਰਵੀਨ ਮਾਵੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਮ ਅਤੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾ ਦੇਣਗੇ। 647-287-0976, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਡਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਨਿਊਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਰਸ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰਵੀਨ ਮਾਵੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਲਰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। 647-287-0976 6472870976 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4: ਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਐਪ ਆਪਣੇ ਐਪਲ ਜਾਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਤੇ। PUNJABILEHRAN ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਐਪ ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਮ ਲਈ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੁੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ, ਕੰਕਰੀਟ ਡਰਾਈਵਵੇ, ਪੈਟੀਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਨਕ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੀਮ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟ। ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ 416-902-9293 416-902-9293। ਨਾਨਕ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।
5: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਕੂਨ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਲਿਵਾਨਾ ਵੈਲਨੈਸ ਸਪਾ। ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟਸ 100% ਹਾਈਜੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਸਾਜ ਥੈਰੇਪੀ, ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਅਤੇ ਪੋਸਟਨੇਟਲ, ਗਲੋਇੰਗ ਹਾਈਡਰਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ, ਲੇਜ਼ਰ ਹੇਅਰ ਰਿਮੂਵਲ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਕੰਟੂਰਿੰਗ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਦੀ ਖਾਸ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ। ਪਤਾ 534 Parkhurst Square, Brampton. Phone number 416-811-5385. Levana Wellness Spa. Jo rakhe tohadi sehat ate sundarta.

आगाज खूबसूरत सुविधा, खूबसूरत लोग, खूबसूरत मकासी है। चलो डिजिटल एएम फ्रीक्वेंसी रहे, टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सुन रहे हो। हार्दिक स्वागत करते हैं, उम्मीद दिन खुशखबार, चढ़दी कला वाला निरपाओ निर्वैर रहेगा, मुस्कुराहट चेहरे का हिस्सा, रोशनी रस्ते दिखावेगी, तुम चलते रहोगे। अद्भुत यानी कि एक लाजवाब गलबात शामिल हो रहे हैं, जो कि ठीक 10 बजे तक तुम सड़ना जिते चलेंगा चलूंगी नाल तेरे पर टिकटा दो ले ली थोड़ी टिकट 905-673-3337 देते सू कॉल कर रहे 9056733337 देते तुम जो सर नाल अपनी गलबात कर रहे हो। एक सफ़र बहुत खूबसूरत पर थोड़े साथ नाल, और नाल नाल तुसी एक सफ़र जो जिंदगी का, क्योंकि जिंदगी की रेल में हर कोई सवार है, अपनी अपनी मंजिलों का सबको इंतजार है, भूखे को रोटी का, बेकार को रोजी का इंतजार है। इंतजार दे विच सानू शामिल कर दियो ते साडा इंतजार कर दियो, बहुत बहुत शुक्रिया, असीं भी तुहाडा इंतजार करदे हां।

0: Namaskar, Sasikal, main aapka Khuda Baksh and I am very super excited to perform at Mata Ji Ki Chowki.
1: Maan tu badaya mera dukh saare taal ke.
0: On 4th September at Eros, the Convention Center. So this beautiful divine evening organized being by Neha Sethi, Aman and Herman. Aur main ye batana chahta hoon ki ye shaam म्यूजिक और भक्ति से भरी होगी. हम इस दिन को जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कर रहे हैं और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सब ने अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, जितने भी आपके क्लोज है सबके साथ आना है. सो गाइस, सी यू ऑन 4th सितंबर.

0: Friday, September 18th, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दिखी, उम्मीद कर रहा इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे।
2: वे आ जा दो मेरे नाल नचिए नचिए बाहच बाहपा वे आ जा दो मेरे नाल नचिए।
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM 530.
4: Punjabi Versa!

0: Friday, September 18th, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत देती उम्मीद कर रहा हूँ इस बार भी तुझे आशीर्वाद दोगे.
2: वे आ जा दो में नाल नचिए नचिए बाहच बाहपा वे आ जा दो में नाल नचिए.
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.

0: विद लीगल बेसमेंट कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी, $4,300 रेंट ते चढ़ी हुई अवेलेबल है। बैरी दे अंदर 4 बेडरूम का घर, 1 बेडरूम दी बेसमेंट, ऑफ मार्केट डील है। जेकर तुसी बाय सेल या इन्वेस्ट करना चाहते हो मैनू हुने कॉल करो। अभिषेक रियल्टर 647927000 6477927000।
1: राइट, अच्छा रखड़ी की सेल चल रही है जी इंडियन फ्रूटलैंड से। 1199 च 20 पाउंड स्वर्ण चक्की आटा मिलेगा, 699 च 8 पाउंड इंडियन डेली वाइट जो चौल ने राइस ने वह मिलने, और ब्राउन शुगर जी है 699 की 8 पाउंड है। देसी घ्यो 2399 का 1.6 किलो है। इंडियन डेली वाइट बाल्टी आला गुड़ 999 का 5 किलो है जी, और ये काले चिट्टे चने 399 दे 5 किलो, बांसी गुड़ 799 का है, और लक्ष्मी देसी बेसन 399 का 4 पाउंड मिलेगा। ब्रैड ले लो वाइट या होल वीट 249 ईच, तो मेहरबान का जूस लो 399 का 3 लीटर, और ये हल्दीराम के स्नैक 199 दे ने। लक्ष्मी जिंजर गार्लिक पेस्ट है जी 299 की 680 ग्राम की वही सारी बोतल तुम्हें मिल गई। ये जी सेल है इंडियन फ्रूटलैंड की सारी लोकेशन से मिलेगी। मंडिया के भाव दसी है जनक जूलर के सहयोग ना जी, टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज, डाओ, नैसडैग, सोना थले, क्रूड ऑयल ते डॉलर उपर। पिछले 1-2-3 दिन च 4-5-6-3-9 सेंट पेट्रोल की प्राइस उपर गई है। खुशखबरी यह है कि अज नहीं जाएगी। एक फर्म है जिन्होंने ड्राइवर चाहिए ने, AZ ड्राइवर चाहिए ने, टोरंटो तो मॉन्ट्रियल, टोरंटो तो US के रानने, बाई वीकली पे मिलेगी, टॉप की कहती कौन की चंकी पे मिलेगी। और तुम जानकारी कुलदीप मांगड़ वीरे फोन कर लो 647-972-54-55 972-54-55। ट्रिपल ए लैंडस्केपिंग वाले साढ़े वीर, तुम इंटरलॉकिंग का काम करा अजे भी कर देंगे, इन्होंने को कुछ डेट्स अवेलेबल ने। और लैंडस्केपिंग रिलेटेड कोई भी काम हो छोटा वड्डा फिक्र ना करो, सिर्फ कॉल कर लो 647-784-1213 784-1213। खरीदने आ तां आ सुनो,
2: हर महीने मैकेनिक नूं पैसे दे दिंदे हो, ट्रक खरीदे आ या मैकेनिक नूं गोद लै लिया है?
3: ओ मैं की करां, ए पुराना ट्रक तां रोज नखरे करदा है।
2: नखरे छड़ो ते सिद्धे जाओ निस्कू ट्रक सेल्स ते।
4: वधिया हालत वाले यूज्ड ट्रक्स, ट्रक वेचना होवे या खरीदना, रेट बिल्कुल वाजब लौंदे ने।
2: फाइनेंस दी सुविधा भी उपलब्ध है,
4: मतलब जेब भी सेफ ते घर वाली भी खुश। बस फिर आज ही चलदे हां निस्कू ट्रक सेल्स, टोरब्रम डेरी दे नजदीक 7055 टोरब्रम रोड मिसीसागा। कॉल 647-581-9999। ट्रक ऐसे के मैकेनिक भी कहेगा हुण मैं की करां।
1: ਮੋਰਗੇਜ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਮਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਿਨਿਊਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਰਗੇਜ BC ਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ A ਲੈਂਡਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵੀ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਲ 905-460-9099। ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਮਰਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। 2155 B ਸਟੀਲਜ਼ ਐਵਨਿਊ ਨੀਅਰ ਟੋਪਰਮ ਯੂਨਿਟ 32। 905-460-9099। 905-460-9099। 460-9099 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਮ ਮੁਝੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते, ये मेरी समस्या नहीं है, ये आपकी समस्या है। इज योर प्रॉब्लम, दैट्स राइट, इज योर प्रॉब्लम।
5: फ्रॉम द डेव कैटलन न्यूज डेस्क, लोकली कवर्ड, नेशनली कनेक्टेड।
1: बहुत सारे हाईवे ने, खास करके 400 सीरीज, जिन्हें स्पीड लिमिट थोड़ी बढ़ा दी है। टोरंटो तो कलैरिंगटन तक हाईवे 401 की जी गति सीमा अज 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ जाएगी। नेपाल में हड़ कारण हुई मौतों की गिनती 900 तो पार हो गई है। सैकड़े मजदूर की पण बिजली सुरंगा में फसण का दसया जा रहा है कि फसे हुए ने बेचारे। एक लार्क टापू के अमरीकी हमले तो बाद ईरान ने जार्डन में अमरीकी फौज को निशाना बनाया। डोनल्ड ट्रंप कहते 4 दिन का काम ही आ, फिर कहते 1 हफ्ते का काम ही आ, फिर कहते 2-4 दिन होर लगन गए, करते कहते 6 महीने हो गए।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्टरी जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड इटोबीको वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1165
1: The wait is finally over. Gordy Kumin of RE/MAX Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at RE/MAX Gold Realty to book your unit today.
2: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार
3: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने
2: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा
3: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
4: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी
3: जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते
4: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
3: 416-509-1509
4: और विजिट insuranceforyou.ca
5: Kataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection Upper, to see cheap flight tickets, si pal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options sonu chahide ne, jan to see visa services, si pal de vecho, puri family vacation Upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne, pahunchna maji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection Upper, call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry The intersection over
6: अगर अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूं और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है
7: 4156057
8: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡਸ ਬੈਸਟ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਆਈਪੀਟੀਵੀ ਬਾਕਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਢਿੱਲੋ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ
9: ਚੱਲ ਕੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ
8: ਉਹ ਭਾਜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 40 ਇਅਰਸ ਇਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ
10: ਡਾਊਨ ਕੋ ਪਕੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ
8: ਪਰ ਢਿੱਲੋ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ ਐਬਨੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਗੋਰ ਰੋਡ 905-204-1313 ਜਾਂ ਢਿੱਲੋਵੀਡੀਓ.com ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ
11: जे मैनू यार ना मिले ते मर जावा जे मैनू प्यार ना मिले ते मर जावा
12: What's up everybody, this is Jasmine Sandler ते तुसी सुन रहे हो वतनों दूर with सुखी निजर

0: Cava on the full eye. Taste ka vada aur choice bhi zyada.
1: Dilli wala butter chicken, Rogan Josh, soya champ, best veg non-veg biryani in the town. Best veg non-veg appetizer ya mouth-watering main course khana ho to seedha chale aaye. Dhaba on Falls, the best food in Niagara Falls. LLBO and beer on tap also available. Walking distance from the falls. Free parking. Visit 5039 Center Street, Niagara Falls. Call 905-358-0864.
0: 905-358-0864. Dhaba on the Falls.
2: Don't blame your luck for all the unhappiness in your life. You just need the support of a person who can give you the right guidance. Meet the renowned psychic fortune teller Pandit Nandaji today, who is the expert of palm reading, face reading and horoscopes. Solution is available for all the problems related to family, health, drinking, depression, financial problems and bad luck. 100% removal of black magic, evil spirits and spells. All religions welcome. Located at Queen and Kennedy in Brampton. Call Pandit Nandaji 647-822-9607. 647-822-9607.
3: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
4: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 905-460-8888 दैट्स 905-460-8888
3: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
5: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper to see cheap flight tickets Nepal de vich Toronto to Delhi Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne jan tusi visa services Nepal de vich puri family vacation upar jaan di soch rahe ne jithe tanu all inclusive vacation packages vi milde ne pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upar call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry The intersection open
6: ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਰੀਮੈਕਸ 골ਡ ਰਿਐਲਟੀ ਦੇ ਗੌਰਡੀ ਖੁਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਸਾਊਥ ਕੈਲਡਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਕੈਲਡਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਹਾਈਵੇ 10 ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ 410 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ 15 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁਣ ਸੇਲ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ ਕੈਲਡਨ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਅੱਜ ਹੀ ਪੱਕੀ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਅੱਜ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ
7: अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूं और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है आज ही मुझे कॉल करें आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है 416-570-0157 416-570-0157

भी डर डर के डर डर के दिन कटा तेरे बाजो मर मर के मर मर के सोनिए नी दिल बटे लेना।

मैं शर्मसार जिहा हो गया, हथ बन तेरे कोल खलो गया। हाय मैं शर्मसार जिहा हो गया, हथ बन तेरे कोल खलो गया।

0: हेलो एएम 5:30 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
1: स्टूडियो विच लाइव गलबात करन लई हुणे कॉल करो 905-564-6444
0: 905-564-6444
1: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो एएम 5:30 तो।

0: अपनी राजधानी। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: कोई भी कार वैन ट्रक का काम हो याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर, रिलायबल अफोर्डेबल ऑनेस्ट सर्विस, जिथे कि मैं भी गड्डियां लेके जाना रिपेयर के लिए। रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स से भी काम करते हैं, कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल, सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट की सेफ्टी करवानी है, स्पेशलाइज करते हैं इलेक्ट्रिकल कंप्यूटराइज डायग्नोस्टिक काम च, स्टील्स एंड मेलनी। रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1479-1498-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1479-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1479-1478-1 ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਯਾਰ ਟਿਊਨ ਚਲਾ ਤੀ ਗਾਣਾ ਚਲਾਇਆ ਨੀ ਸੋ